0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।

0: sip on a extreme energy drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागी संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: सामुदायिक पहुँच का लागी संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्दछौं। साथै शोक संतप्त परिवारजनप्रति ईश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भनी हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौं। श्रीमती अम्बिका नेउपाने, छोरा संजीव नेउपाने, छोरी ज्वाई संगीता नेउपाने शर्मा, प्रकाश शर्मा, रामकोट समाज सेवा समिति परिवार, भीमेश्वर नगरपालिका 6, रामकोट, दोलखा।

नमस्कार, रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज बाट म बद्रप्रसाद सापकोटा। आज विक्रम सम्मत 2083 साल शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सन् 2026 मे 10 तारिक वैशाख 27 गते आइतबार अष्टमी तिथि। अब स्तुति गरौं। आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरी।

काम ईश्वर को नाम फल होने काम सब ये जन भक्त जन ने हो भजू भनी देखने आखिर का पलना छेव मची मंथी नारायण काम लगिनी।